वर्ल्डिंग को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र ₹1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छिटो बनेगई वर्ल्डिंग।

0: अमोली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।
2: अब कहाँ सुनी बिहार भाई शक्यो? ये उठा पन छोरी मंजराई मेरे एसएलसी दिने से पूरे उनसे की ना।
3: सर, गाँव थरी ले पास कर से एसएलसी।
4: आमा, मैं पढ़ सुनी आए।
5: वाड़र की आर्चेस।
4: मैं भी एक और चीन में। आज बाटा हमरे घर को इज्जत तेरो हाथ में था छोरी।
6: मैले मेरो बुट्टु गुट्टु र आदुले सुम्पिएको छु मेरी चोली दुखेन पास।